0: हिरवळीवर खेळताना सभोवार पाहावे, तो दिसतात बहरलेली माणसांची अजब जंगले, उंच झाडे, खुजी झाडे, वाकडी झाडे, सरळ झाडे, यशाच्या झुंबराखाली डोलणारी, नाचणारी, अपयशाच्या एका फटक्यात त्यांची पाने गळून जातात, अपयशाच्या एका फटक्यात त्यांची पाने गळून जातात, जयघोषाच्या जल्लोषातली हवाच सारी निघून जाते, शेंड्यावरती, खांद्यावरती, फांद्यावरती नाच।
1: दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में आज सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जो आधारित है आसमान पर। दोस्तों, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। आसमान, यह तो आधार है हम सभी का। कहते हैं कि जिसका कोई घर नहीं वह धरती पर सोता है और आसमान की चादर ओढ़ लेता है। जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा है आसमान। नभ, गगन, आकाश, ये सारे ही शब्द हैं जिनका अर्थ है आसमान। ये धरती भी अधूरी है इस आसमां के बिना।

देता है, पानी वही देता है। आसमां पृथ्वी के ऊपर स्थित वायुमंडल की वह परत है। सतह से देखने पर एक गुंबद की तरह दिखाई देती है। यह परत हवा, मौसम, बादलों, खगोलीय पिंड को समाहत करता है। दिन में नीले रंग या यह दृश्य शाम में काला दिखता है, जिस पर अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं।

हमराज इस फिल्म से गीत आपने सुना, गाया था महेंद्र कपूर ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया था रवि ने। दोस्तों आज सुन रहे हैं कुछ आसमां वाले गीत। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। आसमां ही स्वर्ग है जहां फरिश्ते रहते हैं, चंद्रमा सूरज वहीं रहते हैं, तारे बस्ती करते हैं। यह आसमां कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है कोई नहीं जानता। मनुष्य चांद पर जाकर आया, बाकी सारे तारों पर भी जाने की सोच रहा है। बड़ा ही संशोधन हो रहा है, अवकाश में उसने स्थानक भी बना रखा है। पर क्या सचमुच ये आसमान पर पहुंच जाएगा? बादल जमी पर भी उतरते हैं, पर आसमां को कोई छू नहीं पाया है आज तक। दूरी से आसमां नाम के किसी अस्तित्व की चर्चा होती है, होती रहेगी।

0: कहाँ है
1: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
0: हाँ हाँ An Evening in Paris इस फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी ने गाया हुआ लिखा था, हसरत जयपुरी ने संगीत से सजाया था, शंकर जयकिशन ने। आसमां में जो बैठा है उसे मानव के रूप में इंसान ने धरती पर जरूर लाया है, जिसे भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो भी इसी आसमां की तरह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे वास्तव में कभी भी देखा नहीं गया, पर हाँ उस पर विश्वास श्रद्धा जरूर रखी जा सकती है, मानव ने रखी है। जैसे आसमां दिखाई नहीं देता वैसे ही उस भगवान को कोई देख नहीं सकता, हाँ पर उसकी बनाई सृष्टि में ही हम रह रहे हैं। यह आकाश, यह अंतरिक्ष, स्वर्ग कवि की कविताओं का विषय बना, जिसकी खोज की जाती है पर वह मिलता नहीं, उस चीज की कल्पना की जाती है। उसी तरह कवियों ने आसमां पर कविताएं रची, कभी आसमां भी प्यार से झुक जाता है, कभी आसमां से फरिश्ते भी आ जाते हैं, तो कभी आसमां पे प्रियतमा को भी बिठाया जा सकता है।

दिल ने पुकारा, इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अदालत से। गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। दिल ने पुकारा में आप सुन रहे हैं आसमां पर आधारित कुछ गीत। दोस्तों, एक सहारा है आसमां, एक नीला रुपहला सपना है आसमां, मनुष्य के अस्तित्व का कारण है आसमां। ये आसमां है जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, पर वह है मनुष्य के लिए। दोस्तों, आसमां है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के लहरों से ही तो हम जुड़े हैं एक दूसरे से। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए।

0: हिरवळीवर खेळताना सबोवार पाहावे तो दिसतात बहरलेली माणसांची अजब जंगले, उंच झाडे, खोजी झाडे, वाकडी झाडे, सरळ झाडे, यशाच्या झुंबराखाली डोलणारी नाचणारी, अपयशाच्या एका फटक्यात त्यांची पाने गळून जातात, अपयशाच्या एका फटक्यात त्यांची पाने गळून जातात, जयघोषाच्या जल्लोषातली हवाच सारी निघून जाते, शेंड्यावरती खांद्यावरती फांद्यावरती नाच।
1: दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में आज सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जो आधारित है आसमान पर। दोस्तों मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। आसमान यह तो आधार है हम सभी का। कहते हैं कि जिसका कोई घर नहीं वह धरती पर सोता है और आसमान की चादर ओढ़ लेता है। जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा है आसमान। नभ गगन आकाश ये सारे ही शब्द हैं जिनका अर्थ है आसमान। ये धरती भी अधूरी है इस आसमां के बिना।

दिल पुकारा इस प्रोग्राम में अभी आपने गीत सुना फिल्म नास्तिक से। गाया था हेमंत कुमार ने, संगीत से सजाया था सी रामचंद्र ने और गीत लिखा था प्रदीप ने। दोस्तों आज आसमान पर आधारित गीत सुनेंगे। आज आसमान सब देता है, धूप वही देता है, छांव वही देता है, पानी वही देता है। आसमान पृथ्वी के ऊपर स्थित वायुमंडल की वह परत है, सतह से देखने पर एक गुंबद की तरह दिखाई देती है। यह परत हवा, मौसम, बादलों, खगोलीय पिंड को समाहत करता है। दिन में नीले रंग या यह दृश्य शाम में काला दिखता है, जिस पर अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं।

हमराज इस फिल्म से गीत आपने सुना, गाया था महेंद्र कपूर ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया था रवि ने। दोस्तों आज सुन रहे हैं कुछ आसमां वाले गीत। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। आसमां ही स्वर्ग है जहां फरिश्ते रहते हैं, चंद्रमा सूरज वहीं रहते हैं, तारे बस्ती करते हैं। यह आसमां कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है कोई नहीं जानता। मनुष्य चांद पर जाकर आया, बाकी सारे तारों पर भी जाने की सोच रहा है। बड़ा ही संशोधन हो रहा है, अवकाश में उसने स्थानक भी बना रखा है। पर क्या सचमुच ये आसमान पर पहुंच जाएगा? बादल जमी पर भी उतरते हैं पर आसमां को कोई छू नहीं पाया है आज तक। दूरी से आसमां नाम के किसी अस्तित्व की चर्चा होती है, होती रहेगी।

0: कहाँ है,
1: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
0: हाँ हाँ। An Evening in Paris इस फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी ने गाया हुआ लिखा था, हसरत जयपुरी ने संगीत से सजाया था, शंकर जयकिशन ने। आसमां में जो बैठा है उसे मानव के रूप में इंसान ने धरती पर जरूर लाया है, जिसे भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो भी इसी आसमां की तरह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे वास्तव में कभी भी देखा नहीं गया, पर हाँ उस पर विश्वास श्रद्धा जरूर रखी जा सकती है, मानव ने रखी है। जैसे आसमान दिखाई नहीं देता वैसे ही उस भगवान को कोई देख नहीं सकता, हाँ पर उसकी बनाई सृष्टि में ही हम रह रहे हैं। यह आकाश, यह अंतरिक्ष, स्वर्ग कवि की कविताओं का विषय बना, जिसकी खोज की जाती है पर वह मिलता नहीं, उस चीज की कल्पना की जाती है। उसी तरह कवियों ने आसमां पर कविताएं रची, कभी यह आसमां भी प्यार से झुक जाता है, कभी आसमां से फरिश्ते भी आ जाते हैं, तो कभी आसमां पे प्रियतमा को भी बिठाया जा सकता है।

दिल ने पुकारा। इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अदालत से, गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। दिल ने पुकारा में आप सुन रहे हैं आसमां पर आधारित कुछ गीत। दोस्तों, एक सहारा है आसमां, एक नीला रुपहला सपना है आसमां, मनुष्य के अस्तित्व का कारण है आसमां। ये आसमां है जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, पर वह है मनुष्य के लिए। दोस्तों, आसमां है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के लहरों से ही तो हम जुड़े हैं एक दूसरे से। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए।

0: सर्जन?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा मर जाओ।